दृष्ट दर्शनी शब्द सुरत ही बुद्ध बल ही सुदो हस्त न पावली चित्रहीन भेदहीन पवन को प्राण पत मिलो मेरी माई रूप ही बुद्ध बल ही।

अपने सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे, आगे सुख

जब लवली भाग लीलार तुझे तब नो भरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूर्द थे कब हू मिट है नीरे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और नेड़े कोई संकट भी आएगा तो 84 लख जूर तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतं दे सेवादार पातशाह हुक्म करो हलम कर लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अब गुरु की संगतं की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैवी गुणों वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की थी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नी गंगा जी असि आप ही अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाता है अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दस गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शना तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुनो ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावे उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की थी माता गंगा दे कन्ना विच प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

पानी जरूर मिले। जिन्हें खोजिया है उन्होंने मार्ग लता है। जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है वोरी अरदास गुरु जरूर मन अरदास। असि कई बार अरदास करते हैं पूरी नहीं होती, यह कारण की अरदास करने वास्ते भी थोड़ी जी सोझी थी। अरदास करने वाले तीन चीजों का ख्याल रखना पैदा। पहली चीज तो अरदास करने वेले ये सोचना है कि मेरी अरदास जायज है कि नजायज, क्योंकि नजायज अरदास भी होती, क्योंकि अरदास चोर भी करते। अरदास जेरी है चोर भी करता है, वह भी आदमी भी अरदास करता है, पर यह अरदास जायज नहीं है। जायज पहली चीज आप अरदास जायज हो, दूसरी चीज मन के अंदर यह पूर्ण भरोसा होना चाहिए है कि जिस गुरु अगे मैं अरदास कर रहा वो मेरी अरदास सुन रहे हैं। तीजा मन के अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए है कि मना मेरी अरदास भी जायज, गुरु भी सुन रहा है, पर दृढ़ विश्वास के पूरी भी जरूरत है। कितने चीजें जिसने मिल जाएगी वो अरदास जरूर नहीं चाहिए। अरदास भी जायज तो यह भी मन ख्याल है गुरु जाग भी जोत है सुन ले, मन के अंदर इतनी कमजोरी है ना मना पता नहीं अरदास पूरी हो गई या ना हो गई तभी नहीं हो, क्योंकि थोड़ा जहा फर्क पै गया, थोड़ा जिथ पै गई ना निथ। इस तरह महाराजा रणजीत सिंह ते पूर्ण सेफ जरनैला ने कहा सी कि शेरे पंजाब पानी बड़ा अथा है, अटकण वाला नहीं। पर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा ठीक मैं इस जरूर पार करा, ध्यान दो तो इधरों अटक विचों भी पानी विचों भी आवाज आई कि ए रणजीत सिंह कितने गलती करके मेरे पैर ना पा दी, मेरा नाम ही अटकया, मैंने किसी ने नहीं अटकाया। महाराजा रणजीत सिंह कलगीधर पातशाह जी ने सिख ने कहा कि ऐसक जो तेरा नाम अटक है तेनों किसी ने नहीं अटकाया, तो अज तक मैं भी किसी ने नहीं अटकाया। कुछ नहीं कलगीधर की बख्शिश द्वारा जेड़े पासे गया फतेह मिली है, अरदास की बेअंत पानी तो संगत है कलगीधर पातशाह, मैं भी तेरा राज भी तेरा से तेरे हुक्म च ही पानी चल रहा है, पैर चले लक्ष अरदास करके जरनैला ने रोके, पर महाराजा रणजीत सिंह अरदास देते पूर्ण फेर सी विश्वास सी घोड़े को मारी दी जिसने पानी छुपाया। अरदास ने सदके गुरु ने बख्शिश की थी, पानी इतना नीवा हो गया कि महाराजा रणजीत सिंह के चरणों में होके बने सुने तरा गुणा के गाओ, सुने सेख पीर पातशाह, सुने अंधे पावे रहाओ, सुने हाथ हो गया अरदास जैद हो। एक मेरी दास कलकत्ते गया, जिस तरह इतने कीर्तन का प्रवाह चल रहा इंडिया थोड़ी बख्शिश द्वारा गुरु दिया संत प्यार कर दिया, इंडिया भी प्रोग्राम रेडियो से भी टेलीविजन से भी चलते रहे, तो कलकत्ते गए फिर दो टाइम का कीर्तन जिस तरह इतने बख्शिश कीर्तन दो वेले का बाबा जी कह

मैंने अपने प्यार दिन साल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी दिल करे चातक की जाए कृपा न उतरे सांस न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हमको लीजिए गोद कुमारी गुरुदर्शन मैं गंगा जी कहता क्या एने प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही साहब जी पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संगत वास्ते कड़ा प्रशादी दे जथेदार जी उठ के बैठ के सारी संगत को सावधान किया प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन को प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कड़ा प्रसाद जी दे जाए है उठो पहले अरदास करो सिख में जो भी गुरु वालों दास मिलती है ना पहला अरदास करो ये अरदास करे तो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास क्यों हुई कोई कार्य है गुरु की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरु की अच्छा तेरी चंगा कार मिले जय प्रसाद मसा सुख मंदिर किसे पे आए तो सारी संगत सावधान जथेदार ने गल पला पा के अरदास की ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसाद जी देख लेके आया है सिख नाम दान बख्शी सिख सिखी दान बख्शी अदू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज सी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल मिल साहबा ने अपने हथी सारी संगत को कड़ा प्रसाद दिखाए गंगा जी हम जल भी चला साहबा के सोहने हथा जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें जपया श्री वाह जल चुकाया जूठे भांडे कौन मांज रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांझे हैं भाई साहब जी लिखते फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी सारे जल सके भुख भी दूर से प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है तर गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का सारी संगत को पक्का कर पक्का कर दिया प्यार करके कर दिया

समर्थन ज्यादा हो जाए तो क्षमा सफल है आई करी लगती है। जो सौ दानवी आवे तो तेरे प्यार को लेके सेवकदार चित बड़ा पसंद है, नहीं तो इतना चिर रहना बड़ा कठिन। अरे गुरु भी बख्शिश है, यही रहमत है गुरु दी जो साडा मजबूत नाल जुड़िया है। तो आओ अरदास करिए अनंत वचन दे पातशाह साडे ते बख्शिश करो। ये जड़िया मंजिला हैं गुरमुखी दे गरीबी ये सारिया पौड़ियां असीं भी इन्हां ते चढ़न की कोशिश करिए। आस्ता आस्ता ये दार ये मंजिल साडे भी मुक जाए तो साडी मनुख यात्रा खत्म साडा जीवन।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या ये मर्दा मर्दा बच के आया, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा है मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदे, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदे। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

से मोर सोक देना हारदा जिसदा साहेब डाडा इसनू मार न सके साहेब की सेव।

ते जन कब हूं नहाए। ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हूं नहारे। सो कदे ना छोड़ दा।

0: खिलौना। अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां दा खिलाड़ी, शस्त्रां दा धनी। अस खिलौना
1: मेरा तो नाम बबिंद सिंह, अस खिलौना सोडी राय। मेरा तो नाम बबिंद सिंह, अस खिलौना सोडी राय। सब खलकत राज दा बांग मंगा गोशे

शहंशाह है गुरु गोविंद सिंह। शाह शाहिशाह गुरु गोविंद सिंह। तालबे मतलब

को दान न लागत निको, आन को दान न लागत निको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

जब्द जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सदान करे, अग आग करे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे, इन्हीं के प्रसाद सब जाले, इन्हीं के प्रसाद सब जाले, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

आप सो जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा। अपने आप जेड़ा नीवा बना के गरीब बना के रखे वाहगुरु वालों उन्हू दात किन्नी मिलती है एदा प्रमाण भाई गुरदास जी देंदे अपनी बाणी अंदर कहिंदे दाना होए अनार दा। अनार दा दाना अपने आप नू निम्रता विच उसने अपने वजूद नू निम्रता लिया के मिट्टी च रोलिया इन्ना गरीब बन गया मिट्टी च रुल गया। वाहगुरु ने उस नू दात बख्शी भाग लाए भाई गुरदास साहब की बाणी दाना होए अनार दा होए धूड़ तूड़ी विच तसे फिर होए बिरख हरियावला हरियावला बिरख बन गया लाल गुलाला फुल विगसे एक बिरख सहस फल फुल फल दे मन अंदर वसे एक दू दाने लख होए एक दू दाने लख होए फुल फल एक दू एक सरसे ज्यों ज्यों लइयन तोड़ फल त्यों त्यों फिर फलिए हसे निब चलन गुरु मार्ग दसे निब चलन गुरु मार्ग दसे होए वड़ेवा जग विच वड़ेवे दा बीज उसका प्रमाण देंदे होए भाई गुरदास कहंदे होए वड़ेवा जग विच तन खे नाल रलाया वड़ेवे दे बीज ने अपना तन मिट्टी च रोलिया की होया होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खे नाल रलाया बूटी हो कपाह दी बूटी बन गया टींडे हस हस आप खिड़ाया। इथे ही बस नहीं अगे इम्तिहान होर पै गया दो मिल वेलन वेलिया वेलने विच भी वेलिया गया वड़ेवा दो मिल वेलन वेलिया लू लू कर तुंब तंबाया तिंजन पिंज उड़ाया तिंजन पिंज उड़ाया कर कर गोड़ी सूत कटाया तन तन खुंब चढ़ाए दे दे दुख तुआए रंगाया फिर कैंची कट्टन कट्टिया फिर सूई धागे जोड़ सवाया लज्जन कज्जन होए कजाया। ए रुमाल बन के गुरु ग्रंथ साहब जी दे सुभायमान हो देखो किड्डा वड्डा भाग गुरसिख दे सीस ते दस्तार बन के सज गया क्यों इस तरह बाबा दीप सिंह ने अपने आप नू साध सिंह जी इन्ने निम्रता विच लै गए कहिंदे पुरजा पुरजा मत मरे कभू न छाके जाता प्रेम खेलन का सिर धर तली गली मित मार्ग पैर धरी जे फिर दीजे कान न जिस मर

आओ गुरु के सिखो। ओ मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हन, आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नूं श्रवण कीजिए। मैनूं याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी, आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, आ नवे सिख सज रहे, भावे ओनू समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी, बीबी सी, उसने उठ के कहा भावे मैनू अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे चरणा नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या मैं नितनेम नाल इस नू टेप ते सुन दी हां और बड़ा ही मैं जिवें शब्द सुन के हेमकुंड साहिब ते पहुंच जानी हां। तो गुरु की साध संगत आओ आपां वी उसे ध्यान नाल

जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्या फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वेता सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी गरीब बनवाज दातार जीओ सब थाई होए सहाय दसां पातशाहीं दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब।

सूत कलहे न कीड़िया क्यों चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया क्यों पार वसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो वे बिन गुरमुक्त न हो वे।

0: हमारी पिक्चर है हमारे पास
1: जो आया तो चल की सब कोई आई वाली है इसके जीता तो सब विचारी अपना ही अपना
2: निका पैसा डाल कर खुश हूँ।

सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों पे नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग महला पहला दा इस शब्द इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं कि ऐ स्त्री ऐ जीव स्त्री जब तेरा त्रिही प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ होया, श्रृंगार का की मतलब है? जब तिर ही नहीं, तिर वाली ही नहीं तो तेरे श्रृंगारा का की मायना? श्रृंगार ते तिर दे नाल ही सुंदर लगते हैं ते बिना तिर तो श्रृंगार करने वाली औरत नू कहिंदे हन दर घर टोई नाल है। उसनू ना दर घर दे विच किते भी कोई टोई नहीं हुंदी। दरगाह झूठ फुआर अते दरगाह दे विच ओ झूठी हुंदी है क्योंकि उसने किस लई श्रृंगार किया अते ओ खुआर हुंदी। आओ अज इस कीर्तन नू पिछले कीर्तना दी लड़ी दे नाल जोड़िए। जब तेरा अंदर ही गलिया पिया है सब गुण तेरे गल चुके हैं अंदर गलिया पिया है और उपरों तू श्रृंगार कर दी तेरे सारे ही गुण गल गए हैं सारे तेरे गुण गल गए हैं फिर तो दूर जान नाल फिर तो दूर जान नाल मंदिर दे विच भगवान होवे मंदिर दे विच अगर भगवान ही नहीं रहा तो फिर मंदिर कादा रह गया एक सुन्नी इमारत रह गई। तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु की पत्नी सी औरत सी एकाया जब तू उस नालों ही टूट गई फिर तू सुहागण किस तरह रह गई? फिर तू सुहागण ना रही फिर तेरा दर्जा सब तो उत्तम ना रहा अते उस फिर तू वाहिगुरु तो अकाल पुरख तो आत्मा तो दूर चली जान दे नाल तेरे सारे ही गुण गल गए हैं। असि सुनिया सी ना हर बिसरत तेरे गुण गले जदों तेरे सारे ही गुण ही गल चुके हैं अंदर टोटल रॉटन हो चुका है ते तेरे बाहरले श्रृंगार बाहरलियां सुगंधियां बाहरली सजावट मांग छपाया होया संधूर पहने हुए गहने कि तेरे उस अंदरले गले हुए हिस्से नू ये छुपा सकेंगे? जब तेरे तमाम गुण गल चुके हैं रोटन हो चुके हैं अंदर तेरी भी ये तस्वीर है तो तेरे श्रृंगार का की अर्थ? गुण गल चुके हैं आज दे इस कीर्तन बहुत गौह दे नाल सुनना विचारना है क्योंकि गुरु बाबा जी आखते हैं कि ऐ स्त्री
ਐ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਉਸ ਪਿਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਪਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ।